0: Listener's Choice, brought to you by Star Plus, Star Gold and Star Bharat.
1: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत. चैनल पार्टनर्स टॉप अप फूड्स एंड परी बासमती राइस.
2: राइट

0: Listener's Choice, brought to you by Star Plus, Star Gold and Star Bharat.
1: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत. चैनल पार्टनर टॉप अप फूड्स एंड परी बासमती राइस.
2: ओके, 23 आफ्टर 8. इफ यू सेइंग बिल्लू, यू आर रॉन्ग, आई एम अफ्रेड टू से. वेल डन डीना इन गिलफर्ड, फर्स्ट वन टू गेट इट राइट. कीप ट्राइंग दो, कीप ट्राइंग. लेट्स हैव अनदर लिसन, शैल वी किड्स. The first one was released in 1998. Dewey Chawla's in that film. The second in 2018, Nusrat Bharucha. And the third one, 2007, Geeta Basra. Can you name all three film names in Paul Shah's threesome? What do you reckon? Give me a call, drop me a WhatsApp.
3: The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk.
2: 02-0881-380-40, or you can WhatsApp 07925-700-272. Second half of our listener's choice, because we got 50-50, innit, bro?

0: जब तक फ्रॉम एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज फ्राइडे द 28th की सुबह शबनम साही के साथ। निर्मल जी इन हाई विकम, भानु इन नॉर्थवुड, अनिल इन वुल्वरहैम्पटन, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस, फॉर योर वोट्स। पूर्णिमा इन विज बीच वुड लाइक टू विश हर डॉटर पारुल एंड सन इन लॉ शमीर अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। Lots of love. Have a blessed, happy life ahead.
1: Listener's Choice brought to you by Colors TV.
2: ये है संगम। पढ़ लिख कर आर्किटेक्ट बनना था इनका ड्रीम, लेकिन ऊपर वाले की थी कुछ अलग ही स्कीम।
0: A house full of chaos, a girl full of dreams. Watch a heartwarming story of love, family and emotions. Watch Bareilly Ki Bachchan Monday to Friday at 8 p.m. on Colors TV. The hit of the hour on Sunrise Radio brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk. Sunrise Radio par is ghante ka hamara hit of the hour. Mohit Chauhan, Pony Pandey, a much loved song from Guns of Banaras.

0: पार्टी शुरू हुई है।
1: बैक टू बैक सॉन्ग्स विद अंबाला स्वीट्स फ्रॉम योर होम टू देयर्स। मेक रक्षा बंधन मेमोरेबल विद एन अंबाला गिफ्ट डिलीवर्ड टू देयर डोर। ऑर्डर एट अंबाला.co.uk।
2: I like it.

0: Ben.
1: Bell. Yeah. भाई तेरा बस लिखता गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक को ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।